परती चतर चक्र भुक्ते स्वयंभव सुमंगल दास भुक्ते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभुते देखते गुफतन संवेदनिया अफ्तस नानक गोविंद सिंह श्री अकाल प्रभु जी सहाय दरबार मित्र दरबारा सत्संग से निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा सर्व देव ते नमस्कार तोहरा

स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परे अं पवित्रं पुनीतं गतागं न जातं न बातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न भर्मं न चर्मं न कर्मं।

गाहू देह दुखं गाहू औखधि रोग के शोक सुखं गाहू देव विद्या गाहू दैत बानी गाहू जाच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जाच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ छद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ सुत शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप नाशन तुट तेज अनुकुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाप नहीं वर्ग व्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध

रंग सब की दीन जमीन जमाजे रचिंग सर्व मकीन मकाम जय राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात बितंग जे रचयंग छत्री छत्र चितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नकिंद नकं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नर पाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग ये देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जय तात न मात न प्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप किन्नर जा छ जुवंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण

जहे अंड से तज जेर रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली वो मेरा काश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद

छूत मतंगन गाद ब्याद अनाद कतंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सोक न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आदिश रंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग

अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता

रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है। नराग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अधोग दाग तक है, अभूत भ्रम फेक है, न तात्मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अदेक सेक वेक है, सदीव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेष विश्वभरण है, जिमी जमान के बिके सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अभेक है, अलेखनाथ जानिए, सदीव सर्वठोर में विशेख आन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई, न करम में न धर्म में न भरम में बताइए, अगंज आदि देव है कहो स कैसे पाइये, जिमी जमान के बिके समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन यो मकान अप्रमाण तेज मानिए, न देह है न गेह है, न जात है न पात है, न मंत्र है न मित्र है न

न चोर है न साव है न साह को कुमार है, न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है, न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है न रेख है न रूप है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है, न छल है न छिद्र है।

परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीध है, न सोज है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न देह है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है।

परम है अभूत है, अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है अभूत अभेक है, बलिय रूप राग रंग है, न द्वैख है न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्त।

न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आदि जे बड़े तपस्तपि विशेखिये, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये। अगाध आदि दीव की अनाद बात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए। सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल मैं।

जाछ के नर माछ मानद मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव सकराओ मुखचार सरब सबद पतार के दर जाप ही जह जाप आद देवा गाद तेजा नाद मुरत अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीन जाछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैष्णंके बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिए जह जूत शेष नाम सहंस वन नहनेत पूर्ण होत सूत सूत हटे सफे सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़द पड़द सके महागव गर्द गाड़ अनंत हार हार कहियो सबु मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लखियो न सेब कतेब देव दानो मूड मानो जछ न जानै जेब भूत बाप भवान भूपत।

दीन बंध प्रवीण श्री पद सर्व को करतार वरन जिहन ना चक्र जा को चक्र जिहना कार जात पात ना गोत्र का था रूप रेख ना बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दुष्ट कंजन शत्रु भंजन।

कोटेंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सबै गुंच कृत भे मुख चार आद अंत न मध जा को भूत भव भवान सद दुआ पर तृतीय अगल युग जत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हर हर थके सबे नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबे कर कूट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार सोध सोध थके महा

को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहूँ सकल विस्तार दोहरा, कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक, को सुगड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक अवतरक दोहरा।

छत रचिते। आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुंड सन महक मथे दान प्रहारन नरक निवारण नदम उदारण उर्द अधे जय जय हो सीमा का सुर मर्दन रम्भक बर्दन आदि प्रते डावरू डवंगे बर बवंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंकुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखंड दमके अथति चमके फूंक फनंग जय जय हो सीमा का सुर मर्दन रम्भक बर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण धुजा परंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सीमा का सुर मर्दन भूमा का सन उर्द अधे दामनी प्रहासन सुछम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़।

संकट निवारण तमु धारण तेज प्रकार खण तुम तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय हो सी सहस्र प्रकार खण आद नील अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंत तुरंगण तिच सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे यदम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्र धन सुंभ मथे बारज बिलोचन ब्रतन विमोचन सोच विसूचन कौज कसे।

घंट का बिराजे रुण सुन बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिक भाजे सुको पराजे मध्य उरंग दुर्जन दल दजे मंदन रिजे सब न भजे रूह रणंग जय जय उसी में खा सुर मर्दन चंड चक्र धन आद कुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोस रोधन क्रूर वृत्ते धुमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन सोत मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट

सुर नर प्रतिपारण पति उदाहरण दुष्ट निवारण दुख हरे। जय जय हो श्री महिषासुर मर्दन विश्व विदुन संश्लिष्ट करे। दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बलिदान वी प्रकर खंड सर्वर वर्कण दुष्ट प्रदर्

क्षण से वगर क्षण संत प्रद क्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्दल गा है दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने याद अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध प्रद क्षण दुष्ट हंते कारण करी ली गर्भ कही ली ज्योत जती ली धुंध मते अष्टायत जमगण सहस्र जमगण दामिन दमगण आद प्रते डुक डुकी दमंके बाघ बंके भुजा फुरंके शुद्ध कते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान बेहंडन दुष प्रचंडन खंड अखंड।

तन भाय अनंत तव कहो जथा मदद नैन तंत करता करी मंगादर कृपाल अद्वय भूत अन भय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जिह नेत नेत सब भेद कात कई ऊच नीच की नो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजता कराए प्रभ एक रूप तय कह लखाए।

दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत न हारै। दाहत है दुख दुखन का दल दुजन के बल मैदल डारे। खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम के प्रीत संभार है। पार न पाए सके पद्मावत वेद का देव वेद उचारे। रोज ही राज बिलोक तराज करो गुरुहान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए। देव देव खपे अंग बेव न बेव लख्यो भ्रम से उभरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान हसेब धके कर हाथ न आए। पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सो किन श्री पद्मापत पाए। आद अनंत अगाध दवेक स्वभूत भवेक भवान अभय है। अंत विहीन अनाथम अबाधा दुख छिद्र अक्षय है। लोकन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभ है। दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद्मापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगे अक्षय है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरी सुत सुंदर श्री पद्मावत ले है। रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो बांध बचावे। शत्रु अनेक चलावत गावत उतन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर पाप सम्भोहन भेट न पावे। और की बात कहा कह तो सो सो पेट ही के पट बीच बचावे।

थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ ना आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हु मिल गायो। भेद कतेब न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ ना आयो। पाए सके ने पार उमापत से दसनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जय को अमितूज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब बजहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोक न संग त्यारे। आद अनाद बेगद वेग जप्यो दिन ही कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बोदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महमान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है जोध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पव हिंगुला हिमालय द्यावे गौर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी अराधे तेरे नाम है फरक फिरंगी माने कंधारी कोरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है मर टाम गले तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वैद्य लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है रूह के रूहले मांग देश के मंगेले वीर बंग से पुनेले बाब पुंज को मलत है गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस न्यावे तिपते थे आए दुख देह के दलत है जिने दोहे दायो तिने पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है देव देवदान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अवेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साध दीन कहियत है पाइय न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पछ पहुचत ताहि चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महाधीन किते व्यास ब्रवीन किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है करते है विचार पैन पूर्ण उक पावे पार ताहिते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पे अपार के बखानी है अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी के मानी है।

जंत रहू न जात जा के बाप हो न मायता के पूर्ण प्रभा के सो छटा के अन मानी है। तेज हूं को तंत्र है के राज सी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है ने जंत्र कह के जानी है। तेज हूं को तार है के राज सी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विबुद है के क्रोध को अमूल है के कोप से अपना करते हैं को अंग को इंद्र का छे को विबुद है हम का को मन का इंद्र है को तेज को प्रकाशी है को इंद्र है के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के सतरण के साल है के मित्र का को को थे के प्रकाशा की बाजी है ने जो को हम को जंत्र है के तेज हम को तंत्र है को मुख मन को मंत्र है के पूर्ण प्रकाश के मुख मन को मंत्र है पूर्ण को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है को पद का को का को है को प्रकाश को कार्य है के देव पद को देव है के जन का है के देव देव के पद देव है के सत भी का सार देव है को देव है के सत्ता को सार है। जान को बतैया है मान को देवैया है जब जब को बतैया है के गोद में कह जा रहा है को तेज को प्रचंड है या कुंडन को है तेज को कीटन को मन है के को कहन है ना मन है को मन है के सु को भरन है के पता को हरण है के सो को करन है या तेज को प्रकाश है पाई है ना पारे पर उड़ा रहूं को पाली हो भी जा विचार और बिना पावन निवास है विचार को विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हल पे जा रहा है पर लग रहा है बलने हल त्रिया में सो रहे देव को देव मान देव मुंह के देव देव निरंजन का भय देव देव के दया का नाम सी है अंजन कबीर है निरंजन प्रभु ने हज से भी का दीन है कहते जब जब में काल देव देव मन के देव मान जब देव मन के देव ना मत भूम के बजते हैं भूमि के महान बाल के रायन के डाल में साज हम के साज मान जो को जब जो का करे यद माल को का जो के करे यद वो जगा के रहे नागरता के संग है के काल है उचाल पारसी पलाव पटसी के लास कमा उगड़ कांसी बाउर सी सर लास रंगा बाल दिन के सोही बोलते हैं मैं जो मात्र का मन्य कर रहा हूँ रसी हला बने रसी से पहले हाजी पूर से लंबानी आता है कहते हाजी पूर से चंद्र की जब बने चंद्र मासी चंद्र के तो नंदी में चंद्र चंद्र जो नंदो ही ले जहाँ ना नक्सी जा सब कड़न जो दा जो बक के अंदर से बिलंदा बाद की रत्न के हाजी की बुजी के लंदी सोही ये तर है हाजी के रुपी हाजी सोही ये तर है। फरासी फिरंगी फरासी से कह दो ठाकी मासी फिरंगी के प्रणाम से ले की तंगलाई जाता है के ब्रह्मचरी के तली को बड़ाई के तली हृदय छचरी पौन के गौरा दिन फिर गांव से चली आता है हाथ के करवा पूर को पलाव काम रूप कमाऊ सब बटवार में मेरे बजे पुआ को हम जाई जब है पूर्ण जब जब जब मंदिर से आता बिना तो प्रकृति हमारी को जब प्राप्त था के भाई।

जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन जाचक जन

0: और बड़े गुरु के शरण प्यारे फिर और बड़े इकट्ठे होकर बैठे हैं उन्हां दे विच कौन कौन गुरु का प्यारा जड़ा है कौन कौन बैठा होया है जिहड़े गुरु के प्यारे ने वो कबीर दूसरे ने अपने अगले जिहड़े बीजी दा प्यार कथा दे वो अगले विचार विच शरण करांगे इत्थे ही समय दी सुतरांदी है साथ सिथरी समय दी माने भी कथा दीआं गलतियां भुलां चो दी माफी बख्शना दीआं पुलाद संत गुरु साहिब बख्शन जो के साक्ष लैणा आखिर दीआं टुकड़ियां पड़ के समाप्ति करी
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਕੀ ਅਚੁਤੇ ਹੈ ਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਜੁਨਾ ਸਿਆਰਨਾ ਸਾਸਤੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਸਰਬਣ ਸੰਜਨ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਸਭ ਕੇ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਹੈ ਆਪਰਮ ਹਰਿ ਹਰਿ
2: ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ
1: ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ।

आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास नवरिए, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री असधुज जू कर यह रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रगासा, सकल काल का किया तमासा, जन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, शिव कण को शिव गुण सुख दियो, सतरण को पल मोह पद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचर या स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जावुद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आ करख करत हों कब हों, तुम मैं मिलत दे धर सब हों, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत बेद भेद अर आलम, नरंकार निर्वकार निरलंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूढ़ कश भेद ना जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भिव, आप आपनी बुद्ध है जेती, वरंत भिन्न भिन्न तोह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा, एक है रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत्बुज खान बहर रच दीनी, कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आ जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो,
दुष्ट जिते उठवत तत पाता सकल मलेच करो रणघाता जे अस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छा छय सकै न कोई एक बार जिंत मैं संभारा काल फांस ते ताही उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दलहु उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अजधुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख नात सह ब्यापत।

कह चौपई सम सतर सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कह जय भादो सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखे आने त्रिय

करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करो, मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरिन संघारो,

त्याग कहाँ चित तम धरो अब रीज के देहो वह हम कहो जाहो बिनती कर जोर करो जब आओ की औध निदान बने अत हीरन में तब जूझ मरो दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करीब नाय अवर वासना नाहे प्रव धर्म युद्ध के चाय सवैया धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में युद्ध विचारे देह।

प्यारे ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ ल कातरता कुतवार बुहारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अरगावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छह सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वधी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौ लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भग

मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्रीयस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तुहे बखान।

कृपा कर जग जीवन जग जीवन हर पुर तारे हो मन मन धारे मन मन धर्म राय दर का कदम पारे पारे जन नानक जल समझा।

आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप करे जरूर आप

0: श्लोक मतलब श्लोक मतलब विष्णु वेश धाओ विष्णु लेले गिराओ विष्णु लेले गिराओ के बेकार विष्णु लेले गिराओ इत पिपा विष्णु लेले सिरपार विष्णु लेले जन फ्रेंड सिरपार विष्णु लेले जन सिरपार विष्णु सूर्य विष्णु लेले सूर्य उड़ी लगान जन कोक विष्णु लेले सुनार विष्णु लेले कलार विष्णु लेले ज्योत
1: ज्ञान
2: हरक मंगल हरक

0: देने के
1: सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना पान सत्य करके ना

अल मलखा सिछाए पै मूरखंदे पत गवाई। बिन नावे किस्ताना पै रहे बिबाणी, मन मिसाणी अंधना जाने फिर पस्तानी। सतगुर बेटे सो सिखाए हर का नाम वसाए, नानक नगर कृष पाया।

प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसना हार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहनना हार कूड़ काया कूड़ कपड़े कूड़ रूपे पार कूड़ मिया कूड़ विवेक पोए खार कूड़ कूड़े ने लगाव श्री आकर तार किसनाल के चय दोस्त।

ज्ञानिन चहे बाजे बाबे रूप करे सिगा। उचे को कहे वादा गावे जुदा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करेगा बाबे।